وهو الحق من ربهم وهو

أشد الوثاق فإما منا بعد

غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارب

محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض

ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله

أصواتكم فوق صوت النبي

گلاں دی خوشبو مٹھاس چن، باغ نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چن، ورنہ

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये आवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
6: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
7: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
8: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
7: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
7: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
8: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
7: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: फील्ड मार्शल सिद आसिम मुनीर जो तेहरान जो दौरो कामयाब अमरीका ऐं ईरान पारां ॻाल्हियूं कंदड़ अमन मुआहिदे जे मसूदे ते मुतफ़िक ॿिन्ही मुल्कनि में 24 कलाकनि अंदरि मुआहिदो थियण जो इम्कान अमरीकी अख़बार वाशिंगटन टाइम्स मूजिबि फील्ड मार्शल सिद आसिम मुनीर अमरीका ऐं ईरान विच में मुआहिदे लाइ मर्कज़ी किरदार अदा कयो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबात, अमरीकी नायब सदर जे डे वेंस, ख़सूसी सलाहकार स्टीव विटकोप ऐं सदर ट्रम्प जे अनाठी जेअर्ड कुशरो जंग जे खात्मे बाबति शुरूआती मसूदे जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। मसूदे मूजिबि जंगबंदी में 60 ॾींहनि जे बाद जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। उन दौरान ईरान जे एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं। अमरीका ईरान बंदरगाह जी नाकाबंदी में मरहलेवार नरमी कंदो ऐं तेहरान खे पाबंदियुनि में रिलीफ ऐं परडे॒ह में मंझंदि असासा बि वापसि कया वेंदा। अमरीका जो नज़रसानी मसूदे ते जवाब अॼु अचण जो इम्कान आहे।

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो ईरान जो इंतहाई मुख्तसर पर नतीजे ईंदड़ साबित थो ईरान अमरीका विच में हतमी मुआदे में हाकाई अकबराई ISPR मौजब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ईरान जो इंतहाई अहम दौरो मुकम्मल कर फील्ड मार्शल सासी की कोशिशों तौर ईरानी क्यादत से मुलाकातों क्यों मुलाकात दौरान खिते में छिकताण घटाण ए तामीर राबतन के हथी दियण से ख्याल की दे वरती ईरानी क्यादत इलाकई मसलन के पुरमन हल लाए पाकिस्तानी तामीर किरदार के सहारा फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में जारी छिकताण के खात्मे लाए सफारती कोशिशों जो हिस्सों हो मुलाकात में ईरान अमरीका हतमी मुआदे दां हाकारी अकबराई थी है। अमरीकी सदर ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सऊदी वली अहद तुर्किया के सदर ए कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता अमरीकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिफ ईरान से मामला तकरीबन तय थी व्या मुआदे बाद अपने हुरमस खोजा छींदी उम्मीद है तो मुआदो ईरान के एटमी हथियार हासिल कर रोकी मुआदे का अग नुकता मीडिया के न बुधाई वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे हु सदर ट्रंप के अमन लाए थे गैरमामूली कोशिश सऊदी अरब ए कतर तुर्किया मिस्र इमारात उर्दन बहरीन कुवैत ए पाकिस्तान के अगवान से एक नतीजा खेस टेलीफोनिक गालबोल से मुबारकबाद पेश करे तो वजीर आजम पैंजे पैगाम में चो तो ईरान अमरीका घरन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर कई सरस उन अमल में अणथक कोशिश के सारायूं था फील्ड मार्शल मौजूदा इलाके की सूरत हाल ए अमन कोशिश अगत बधाने लाइ ख्याल की देवट जो मौको फराहम कर जी खिते में चटादार अमन कायम कर सकते पाकिस्तान पर अमन की कोशिशों इंतई खलूस से गड जारी रख उम्मीद है तमाम जल्द अस इंदड़ दौर के मुजाकर की सरबराही कदी
1: व्हाइट हाउस बारा फायरिंग वाले जवाबदार एक

0: व्हाइट हाउस बारां फायरिंग में उनसे जवाबदार एक वाटर हाउस सिक्योरिटी फोर्स जवाबी कार्रवाई में मारजी वा व्हाइट हाउस बारां चेक पोस्ट से फायरिंग कर जवाबदार सुणप मेरीलैंड वासी 21 साल नाइसर बेस तौर कई वही जवाबदार जो जहनी तवाजुन ठीक न हो पे बस सेक्रेटरियट सर्विस के एहलकार विड़ी चुको हो। वाके बाद व्हाइट हाउस में लगाय लॉकडाउन खत्म गुजरियल रात हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सिस चेक पोस्ट से हमलो कर 30 का गोलियों फायर क्यों गोलन के ठिकाने सबब सहाफिन हमले में भाज पैजी वही खौफ हिरास पकड़ी वो। वाके बाद सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो खेस महफूज हंध मुंतकिल किया वो।
1: रात बस यो वयासे ते वडेरे जी ओताक ते उते वडेरो भी असन जो बाचों की दारी गंदो त वडेरो उते वेठो
2: घणी कोनी लगी टाइम पर
1: ट्रे लगी त इते रस्ते में साह दन त
3: वडेरा मान भाषान पर वइने फायर थिया इने के लग
0: पुलबर सा वडेरे जे पुटर तां कतल थेल पोरत जो खून रोण जो कोशिशों पुलिस पोरत अजमल मेमुर ते गोलियों हलाइंदल वडेरे जे पुटर बिलाल सरकी के गिरफ्तार न कयो। पुलिस वाके जे अंदरी जांच करण बदरा वडेरे बिलाल सरकी जी व्यंगार वहन लगी। पुलिस चौकीदार अजमल जे कतल के तपाकी करार दे केस भी दाखिल कर छो। मकतूल जे वारसन चाव है तो वडेरो बादशाह मानू है बस गोली हली वयस नौजवान के टे गोलियों लगियो बस तपाक थी वो।

0: 10:15 AM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो सेंटर साइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई 03073

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर जो तेहरान जो दौरो कामयाब अमरीका ईरान पारा गाल कड़ अमन मुआदे के मसूदे के मुतफिक बिन्हीं मुल्क में 24 कलाकन अंदर मुआदो थे इम्कान अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स मूजिब फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर अमरीका ईरान विच में मुआदे लाइ मरकजी किरदार अदा किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबात अमरीकी नायब प्रधान जेडी वेंस खसूसी सलाहकार स्टीव वटकोव ए सदर ट्रंप के नाठी जेयर्ड कुश्नर जकन जंग के खात्मे बाबत शुरुआती मसूदे की मंजूरी दई छी। मसूदे मूजिब जंगबंदी में 60 दिन के बाद की तजवीज डी वही है। उन दौरान ईरान के एटमी प्रोग्राम से गाल व्यू अमरीका ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी में मरहलेवार नरमी कन्द ए तेहरान के पाबंदी में रिलीफ ए परडे में मंजमंद असासा भी वापस कया वा। अमरीका जो नजरस्थानी मसूदे से जवाब अचण जो अज जो इम्कान है। फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर ईरान के इंतहाई मुख्तसर पर नतीजा डींदड़ साबित थो। ईरान अमरीका विच में हतमी मुआहदे में हकारी अगभराई आईएसपीआर मूजिब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सिद आसम मुनीर ईरान जो इंतहाई अहम दौर मुकम्मल कर। फील्ड मार्शल सालसिया की कोशिश तौर ईरानी क्यादत से मुलाकातू कय मुलाकात दौरान खिते में छिकताण घटाण ए तामीरी राबतन के हथी डण से ख्याल की डे वट थी। ईरानी क्यादत इलाकई मसलन के पुरमन हल लाए पाकिस्तान तामीर किरदार के सारा यो। फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में जारी छिकटाण के खात्मे लाए सफारती कोशिशन जो हिस्सो हो। मुलाकात में ईरान अमरीका आत्मी मुआहदे दा हाकारी अग भराई की है। अमरीकी सदर ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर सऊदी वली अहद तुर्किया के सदर कतर के अमीर से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी सदर ट्रंप जवाज फील्ड मार्शल आसम मुनीर से गाल बोल थी है। ईरान से मामला तकरीबन तय थी व्यान मुआहदे बाबत अपना हुरमस खोले छींदी उम्मीद है त मुआहदो ईरान के एटमी हथियार हासिल कर रोकी मुआहदे का अग नुकता मीडिया के न बुधाईदी।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8591-800
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मिरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मिरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमार्ट अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: से वो उसका बुलेट जो है वो हो गया है इत्तेफाक से कोई वो एक बच्चा जो है वो जान बाँक हो गया शहीद हो गया है अरे इत्तेफाक आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें अगर इत्तेफाक नहीं होता अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है लोग एक आदमी तो कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई
3: एमपीएस और अफसर सरकी टोल पर संपूर्ण के कत्ल करने वाले जो मौके पर जान लगो आला स्तर जांच का आगे वाक्य इतफाकी करार दी छो फर्जी तौर से जांच जो मुतालबो भी कयो डॉक्टर सोराब सरकी पंजे वीडियो बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई तो वाक्य इतफाक है बिलावल सरकी पिस्टल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नौबान के गोलियों लगियो पुलिस पर वडेरे की विंगारू पण जी वाक्य इतफाकी करार दई केस दाखिल कर छो अमेरिका ए ईरान विच में गालियों जो बो दौर जल्द पाकिस्तान की मेजबानी हेठ शुरू थी वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे तो पाकिस्तान खिते में अमन लाय कोशिशों जारी रख अमन लाय अमरीकी सदर इस्लामी मुल्क के अगवाणों से गाल बोल कई फील्ड मार्शल सद आसम मुनीर अमरीकी सदर ट्रंप से राबते में रहो अमन कोशिश में सद आसम मुनीर की कोशिशों भी वाखाण जोग ईरान मुआहदे से गालियों मुकम्मल थे डील जो ऐलान जल्द थी सके तो अमरीकी सदर ट्रंप है तो मुस्लिम मुल्क के अगवाणों से गाल बोल हाकारी रही फील्ड मार्शल सर आसम मुनीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर तुर्क सदर मिस्र के सदर ए कतर के अमीर से भी फोन से गालियों थी मुआहदे बाद अपना हुरबज भी खुली देंदो।

0: व्हाइट हाउस 12 फायरिंग में मुलज जवाबदार एक वाटर सिक्योरिटी फोर्सेज जवाबी कार्रवाई में मारजी पाया। व्हाइट हाउस 12 चेक पोस्ट से फायरिंग कंदर जवाबदार सुप मेरीलैंड वासी एक सलाह नाइसर बेस तौर कई वही जवाबदार जो जहनी तवाजुन ठीक न हो पे सेक्रेट सर्विस जे अधिकारियों से विड़ी चुको हो। वाक्य बाद व्हाइट हाउस में लगाया लॉकडाउन खत्म। गुजरियल रात हथियारबंद सिक्योरिटी फोर्सेज चेक पोस्ट से हमलों कर 30 का गोलियों फायर क्यों थकान सबब साफ वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद हो केस महफूज हंध मुंतकिल किया वो। हैदराबाद में अणॼातल औरत ए मर्द जा लाश हथ ओसलीवार इलाके में औरत ए मर्द जा लाश मिलिया। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कया। खैरपुर ऐं बरपासी में उरड़ी तेज़ीअ सां पकड़जण लॻी 13 बारड़ा सिटी अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतज़ामिया जो चवण आहे त मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां 13 बारड़ा उरड़ी सबबु फोर्स चेक पोस्ट ते हमिलो करे 30 खां वधीक गोलियूं फायर कयूं। थकाउनि सबबु साफ़ बालाबड़ सां टालर मोटरसाइकिल में टकर हिकु ॼणो थी पारजी फौत। क़ौमी शाहराह ते हादसे सबबु पकाचांग वासी बशारत चांग फौत थी वियो। लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल। करमपुर भरसां बेगारी केनाल मां हिकु शख़्स जो लाश हथ गोठ मस्ती खान बिजराणी वटां लतीफ़ दायो जो लाश मिलियो। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले करे छॾियो।
1: आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद आटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद आटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-0300-3855-69।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वण कन जो सूर घटि ॿुधण में

0: हथियार था वो साफ माफ कर रहे थे, तो वो इतफाक से वो उसका बुलेट जो है वो खुल हो गया है इतफाक से, कोई वो एक बच्चा जो है वो जहां बाक हो गया, शहीद हो गया है इतफाक। आप ये रेस्ट अश्योर आप यकीन करें, अगर इतफाक नहीं होता, अगर कोई खुदा न खासा मर्डर होता तो जाहिर है इतना बड़ा गांव है, लोग एक आदमी को कहता ना कम अज कम जो है इज्जती हुई है।
1: एमपीएस और अफसर की ठुल बरसा पुरत के कत्ल के अंदर वडेरे जो मौके पर जान लगो आला सतह जांच का अगे वाक्य इतफाकी करार दे छो फर्जी तौर जांच जो भी मुतालबो किया। डॉक्टर सौराब सरकी पंजे वीडियो बयान में यकीन दियारण की कोशिश कई तो वाक्य इतफाक है। बिलावल सरकी पिस्तल साफ कर रहे हो तो अजमल उर्फ नौमान के गोलियों लगियों, पुलिस पर वडेरे की फिंगारू पणजी वाक्य इतफाकी करार दे केस दाखिल कर छो। ईरान आबनार हुरबस खोली तो का फीस न वो पैंजा विछायल माइंस हटाई अमेरिका जवाब में नाकाबंदी खत्म कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुकता सामू आने छा। अमरीकी अहदेदार मूजिब ईरान आजादी से तेल विकड़ी सो वो सब डील तहत 60 डी की जंगबंदी में वाद दौरान थो। मवामती यादाश्त में वायदो शामिल हों तो ईरान कदें भी एटमी हथियार हासिल न कर सो। रचाओ यूरेनियम गाल कंदो ऐं डेल में लबनान जंगबंदी जो खात शामिल हूंदो। ईरान मुआदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि, डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, इमारती सदर तुर्क सदर मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं। मुआदे बाद अपना हुरमत भी खुली वो डील बावजूद अपना हुरमत से असो कंट्रोल हों। तर्जमान खातब अलंबिया हेडक्वार्टर चवना तो अपना हुरमत का गुजरन जो वक्त ए मेरीटाइम लाइसेंस ईरानी अख्तियार ही जारी कंद। ईरानी परडही तर्जमान इस्माइल बाकाई चवे तो एमओज आखिरी मरहले में आन तफसीली गाल बिन महीन तारी रही थी। ईरान ए अमरीका विच में डील के वेझो पहुंचने वालों गाल वक्त का अग जो ईरान जो एटमी प्रोग्राम अजा बहस हेठ ना है।

अमरीका ईरान विच में गालियुनि जो बियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमुन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां अमरीकी सदर टेलीफोन ट्रंप टेलीफोन ते राब्ते में रहियो। अमुन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखाण जोगियूं आहिनि।

0: नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार जो चवण है अमरीकी सदर ट्रंप मुस्लिम अगवाणन से गालियों कयों गालियों दौरान हाकारी नतीजन की उम्मीद पैदा थी। पाकिस्तान खिते में पायदार अमुन गडियल एतराम और इस्तेहकाम हर मुमकिन कोशिश जारी रखो खिते दुनिया के अमुन लाय चेकता न पर गालियों और सफारतकारी के तरजीह दियणी पवंदी। पाकिस्तान जरियो मानियल नए तजवीजन में लबनान में जंगबंदी भी शामिल है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास राकची है तो तेहरान जो जोर है तो जंग खत्म थे कें भी मुहिदे लाए लबनान में जंगबंदी मुहिदो लाजमी हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन दौरे दौरान हांगजोर में मौजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर पाकिस्तान चीनी कंपनियों विच में सनअतकारी मुआहदन और मफामती यादाश्तन से सयूं थन्दू। शहबाज शरीफ चीनी कंपनियों के सरबराहन से भी मुलाकात कर हैदराबाद में अणॼातल औरत और मर्द जा लाश हथ होस्टी वाले इलाके में औरत और मर्द जा लाश मिलिया पुलिस वाकई वाले हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359210।
3: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300385569

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

सोच ना आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सखर मोहरो मीरपुर खास मटियारी सगर मेहराब और मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो जनाब बताएंगे आप लोगों को किस तरीकेकार से जो है ना आप अपनी खूबसूरती को वापस ला सकते हैं, आप अपनी खूबसूरती को हमेशा के लिए मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, स्किन अगर चाहते हैं कि भाई हमेशा ग्लोइंग रहे तो आपने इस्तेमाल करना है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। और कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, कब लगाने हैं, ये बहुत ज्यादा वाली बातें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन कहना कितनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल जी जरा अपना तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीजन most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character your RJ and your DJ Sidra Muskan naam to sunai hoga to bilkul aapki Sidra aap logo ke saath saath mukhatab ho chuki hai beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye। chaliye ji jaldi jaldi se hamare program ka hissa bante jaiye aur bataiye ki aap hamare saath maujood hain kahan kahan se sun rahe hain aur saath hi saath apne haal chaal batate jaiye to dear listeners anta ke fahalat kaise hai aapki halat ummeed hai chadidan ke bilkul theek thaak honge to bilkul mood ke saath bilkul program ka intezar kare honge to aapke jo intezar ki ghadiyan thi na wo khatam ho chuki hai aur फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी 3 बजे तक। यानी कि ठीक अब से लेकर मैं पूरे 3 बजे तक आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाली हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और जनाब बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे, बहुत ज्यादा वाला फन करेंगे और बहुत ज्यादा वाले खूबसूरती के राज आप लोगों को बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ साथ कनेक्ट रहने के लिए, हमारे साथ फन करने के लिए रेडी हेडी हो जाइए क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों का है और आप लोग अगर नहीं होंगे तो मजा कैसे आएगा। तो बिल्कुल जी आ जाइए प्रोग्राम में और साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्रीओ का हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अमियाएं, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। बिल्कुल जी आगा से प्रोग्राम किया जाएगा और आज एक बहुत प्यारा सा हम कलाम सुनते हैं प्रोग्राम के अंदर और कलाम सुन के उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये आप लोगों को बताते हैं। तो आपका हमारा साथ पूरी 3 बजे तक आप सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: ओके जनाब, सब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है जनाब बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स से, जिसमें आप लोगों के लिए शामिल है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. तो प्रोग्राम में अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो क्या तरीके कार फॉलो करेंगे, उससे पहले जरा आज आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होगा. तो आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है, कभी बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं जिनके ऊपर हम कभी शायद ध्यान नहीं दे पाते, तो वैसे ही आज जरा एक और बात हमारी जिंदगी में जो कि हम शायद डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं लेकिन हमने कभी उस बात के ऊपर शायद ध्यान ना दिया होगा. तो आज आप मुझे ये बताइए जरा, क्या आप ये चीज समझते हैं या फिर शायद आप जानते होंगे कि डेली यानी कि रोजाना अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? क्या कभी आपने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि आप अपना चेहरा रोजाना आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं? ये आज आप मुझे बताएंगे. अगर आप जानते हैं तो बताइए, अगर आप नहीं जानते तो जरा फर्ज करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप अपना रोज जो है ना वो चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते होंगे. ऐसे हमें पता चलेगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल कितना रखते हैं, खूबसूरती का ख्याल रखने वाले हैं या नहीं. समझ रहे हैं. ओके जी, तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, वोकल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा ऑफिशियल पेज है जनाब, जिसके ऊपर आप आकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं, हमारी लाइव पोस्ट आप लोगों को मिलने वाली है. लाइव पोस्ट के ऊपर आप आ जाएंगे और पोस्ट को लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. ठीक हो गया, तो जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है. शेयर करेंगे तभी बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि भाईजान मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं. तो खूबसूरती जो है ना वो जितनी ज्यादा लोगों को बतानी चाहिए खूबसूरती के बारे में कि भाई आपको खूबसूरती कैसे हासिल हो सकती है, तो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है. तो बताया करें लोगों को कि भाई आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, खूबसूरत कैसे रह सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाँ जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कितने हैं, क्वालिटी के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोडक्ट की जो है ना वो ये भी पता होना चाहिए कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं. अगर हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात करें तो उसमें आप लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, ये दो प्रोडक्ट्स हैं. बाकी अगर हम व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आ जाती है, और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है ना व्हाइट एज की लवली क्रीम आ जाती है. अब ये दो क्रीमें हैं, एक नाइट क्रीम है और एक ऐसा समझ लें कि डे क्रीम है. यानी कि अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाते हैं तो वो आप रात के टाइम लगाएंगे, बाकी अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाते हैं तो वो आप पूरा दिन लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगाइए. ठीक है, साथ में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखा जाए तो भाई उन लोगों के लिए जो कि अच्छी वाली फेयरनेस क्रीम की तलाश में, और फेयरनेस क्रीम आपके हाथ में बिल्कुल मौजूद होगी जब आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल करेंगे. तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है, और उसके साथ साथ व्हाइट एज का आप लोगों को साबुन मिल रहा है, और उसके साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है जो कि विटामिन सी के साथ साथ तैयार है, और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ना जी डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि व्हाइटिश वालों का ही है, लेकिन अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम नाम लेकर आप परचेज कर सकते हैं, जो कि फुल आयुर्वेदिक फार्मूले से तैयार शुदा है. इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है जो कि आपके चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करेंगे, आपके चेहरे के एक्नी का कंट्रोल करेंगे, आप लोगों की खूबसूरती में मजीद इजाफा लाते जाएंगे. क्योंकि जब एक्नी आपके चेहरे पर आ जाते तो यकीन जाने मजा ही नहीं आता, जिंदगी ऐसी अजीब अजीब सी लग रही होती है. तो अगर आप टीनेजर से अगर आपके चेहरे पर भी एक्नी आना स्टार्ट हुए या फिर आप एक्नी से सफर करें काफी ज्यादा, तो भाई आपको चाहिए कि आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी जो ट्यूब है ना वो जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छी आपकी स्किन हो जाएगी. तो ट्राई करने में क्या ही हर्ज है, ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपको मजे आ जाएंगे. और साथ साथ टॉपिक को फॉलो कीजिए, जरा मुझे बताइए कि आप अंदाजा लगाइए या फिर क्या पता आप जानते ही होंगे डेली बेसिस पर यानी कि रोजमर्रा आप अपना चेहरा आईने में कितनी मर्तबा देखते हैं, यानी कि कितनी मर्तबा आप अपना चेहरा आईने में रोज देख रहे होते हैं. इस सवाल का जवाब दीजिए. यहाँ पर हुआ जाता है टाइम के शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ली जाए ब्रेक के बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक, और सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ.
1: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज. खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-6-9।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: तो मेरा फैन
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेट पर. हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरा और मादली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. ओके जनाब, सो वाइट एज एनजी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदी. आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आपने क्या कभी इस चीज के ऊपर गौर किया है कि आप डेली बेसिस के ऊपर यानी कि रोजाना कितनी मरतबा अपना चेहरा जो है ना वो आईने में देखते हैं, शीशे में खुद को देखते हैं कितनी मरतबा. क्या कभी आपने ये चीज नोटिस करी है? करिए तो फिर बताइए मुझे. और इसी के साथ साथ आप 8881 और फेसबुक पर मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं. और अगर आप भी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं या फिर खूबसूरत रहना चाहते हैं, ये तीनों सूरतें थोड़ी अलग अलग है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खूबसूरत बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे जो खूबसूरत रहना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं. तो देखा जाए तो तीनों चीजें जो ना वो थोड़ी मुख्तलिफ है. लेकिन बात यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है कि आप सब लोगों ने यानी कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो आप सब लोग जितने भी हमें सुन रहे हैं, चाहे आपकी स्किन किसी भी तरह की है, आप खूबसूरत रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या फिर खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं, इन सारे मामलात में आप लोगों के पास व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. ये जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार शुदा है. ये बहुत ज्यादा ऐसी नेचुरल चीजें होती हैं जो कि आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा अहम होती हैं. तो अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को जो है ना हमेशा फ्रेश बनाए रखती है और जनाब आपकी स्किन को फेयर बनाती है. उसके अलावा आपकी स्किन की हिफाजत करती है उन तमाम चीजों से जो कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे स्किन के ऊपर आ जाती हैं जिनके बाद जो है ना हमारा चेहरा खराब होना स्टार्ट हो जाता है. सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके चेहरे पर जब एक्नी आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आपके चेहरे पर एक्नी आना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना थोड़ी सी अपनी जो आपकी डेली लाइफ होती है ना उसमें थोड़ा सा आपने चेंजिंग लाना होता है. एक तो ये कि आपने खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल करना होता है. दूसरा ये कि आपने अपनी केयर जो है ना अपने चेहरे की केयर वो कुछ ज्यादा करनी होती है. जिनके चेहरे पर एक नहीं आते ना उन लोगों से यही बस गुजारिश होती है कि आपने कुछ ज्यादा नहीं करना होता, बस आप अपने चेहरे का ख्याल जो है ना वो नॉर्मल लोगों से कुछ ज्यादा रखा करें. क्योंकि जिन लोगों के चेहरे पर एक नहीं आते तो उनको स्किन का जो ख्याल होता है ना वो कुछ ज्यादा रखना पड़ता है. तो अपने चेहरे को हमेशा क्लीन रखा करें और साथ में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करें जो कि ऑयल कंट्रोल और साथ साथ एक्नी कंट्रोल करने में आपकी मदद करे. तो जो टीनेजर्स लोग हैं जो एक्नी की वजह से परेशान बैठे हैं, आपके चेहरे पर एक्नी आ चुके हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे, तो आपके पास मौजूद होना चाहिए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम. ये जनाब डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब है जो कि नॉर्मली आपको कहीं से भी मिल सकता है और ये जनाब आयुर्वेदिक फार्मुलेशन के साथ तैयार शुदा है. यानी कि कोई भी आपको टेंशन और घबराने वाली चीज ये नहीं कि भाई हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या पता हमारी स्किन खराब हो जाए. बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जनाब जब आप डॉक्टर पिंपल का ये एक्नी वाला ट्यूब इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर जो एक्नी है ना उससे फाइट करता है, आपके चेहरे पर जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म करता है, आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो स्मूथ और क्लियर बना देता है. आपके चेहरे पर एक्नी मार्क्स हो या फिर आपके चेहरे पर जो है ना किसी भी तरह का एक्नी हो, ब्लैक पोर्स हो, ब्लैक हेड्स हो, व्हाइट हेड्स हो या फिर जितनी भी सारी चीजें जो कि आपके चेहरे पर एक्नी बनाने का वजह बनती है, रीजन होती है, तो उन तमाम चीजों को खत्म कर देता है. तो ये डॉक्टर पिंपल का एक्नी क्लियर ट्यूब है. खास करके जैसे गर्मियों का सीजन आता है तो लोगों के एक्नी जो होता है ना वो खत्म ही नहीं होती और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. आप जरूर ट्राई करके देखिएगा. लगाने के तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान है कि आप रात के टाइम इस्तेमाल किया करें. जब आप सारे कामों से फ्री हो जाए तो बस अपना फेस वॉश कर लें व्हाइट एज ब्यूटी सोप से या फिर व्हाइट एज का फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं क्योंकि विटामिन सी से तैयार शुदा है. दोनों चीजों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कीजिए. उसके बाद आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी वाला जो ट्यूब है वो अपने चेहरे पर अप्लाई करें. जहां पर एक्नी हो वहां वहां पर लगाएं. चोट हो, कोई भी चोट का निशान हो, जलने का निशान हो, जितने भी निशानात होते हैं, जिद्दी निशान हो, वो सारे रिमूव हो जाते हैं जब आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी क्रीम का. तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, रात के टाइम लगाइएगा और लगाने से पहले हाथों को और फेस को अच्छे से वॉश कीजिएगा. जनाब
سو یہ ہمارے پاس بہت ہی اچھے اچھے پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرتے جا رہے ہیں تو ہمیں بتاتے بھی جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کراتے جا رہے ہیں, کہاں پر اویلیبل ہو چکے ہیں, کہاں پر ابھی نہیں مل رہے, یہ بھی آپ مجھے بتاتے جائیے. لیکن اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر چاہتے ہیں کہ اویلیبل ہو جائے تو آپ ڈائل کیجیے گا 03-15-799-0595 یہ نمبر آپ لازمی ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر آپ کے سٹی میں آپ کے گوٹ میں یہ سارے پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. تو اویلیبل کرائیے, استعمال کرتے جائیے اور خوبصورت ہوتے جائیے. خوبصورتی اب بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے, جیسے کہتے ہیں نا جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی لوگوں کے لیے وہ کام جو کہ آپ لوگوں کو بڑے مشکل لگتے تھے وہ اتنے ہی آسان ہوتے جا رہے ہیں. تو ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے نا خوبصورتی بھی آسان ہو چکی ہے کیونکہ آپ کے لیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو جائیے اور پرچیز کیجیے اور استعمال کرتے جائیے. اوکے جی, آپ کے میسیجز ہیں جو کہ جلدی سے پڑھتے جائیں گے ورنہ اوپر چلے جائیں گے. تو عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. وعلیکم السلام, خوش آئے ہو جی؟ ماں ٹھیک, تاں بدھائیو. اور کہتے ہیں مصروفیات بہانہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی, مگر نظر انداز کرنا ہمیشہ واضح ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں لولی دا جلوہ سانگ سلام, کیسی ہو؟ میں صفا ٹھیک, تاں بدھائیو کی آئے ہو. اور حالا رحمت ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اور ثنا اللہ بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اداس لڑکی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام سویٹی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تم بتاؤ کیسی ہو میری پیاری او پی. اور مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, گڈ آفٹر نون. ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ. اور یہ گانا بھائی میں سوچ رہی تھی جب سے ہم نے جو ہے نا یہ پروگرام کرنا اسٹارٹ کیا ہے, میں آپ کو کہتی ہوں کہ وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم کے ساتھ ساتھ مجھے اس گانے کی یاد آ جاتی ہے کہ یہ والا گانا بھی آپ لوگوں کو سنانا ہے. تو آج ہدایت اللہ نے فرمائش کر دی تو میں نے سوچا چلو بھائی یہ والا گانا تو ہم لازمی سنیں گے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اس کے کیا فائدے ہیں اور آپ کیوں استعمال کریں گے تھوڑی دیر کے بعد بتاتی ہوں. فی الحال آپ کے میسیجز پڑھ لیتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, پوسٹ کو اسی بات پر لائک اور شیئر کرتے رہیے.

अच्छा आदल कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, काश आप बचपन में टीचर होती तो डेली स्कूल आते हम भी, कभी कोई बहाना नहीं करते स्कूल ना जाने के लिए. अच्छा अच्छा स्मार्ट किशोर भाई कहते हेलो हाय हाजिर, स्मार्ट हाजिर है, क्या बात है, स्मार्टू भाई को वेलकम करते हैं. और स्मार्ट किशोर कहते हैं कि अगर आप अपनी परेशानियों को गले लगाकर आई लव यू कह दें तो हो सकता है वो भी छोड़कर चली जाए. बात में दम था वैसे. हजार खंड जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं छाला लाजवाब वाइटिश ब्यूटी शो ये न लवली दा जलवा दवा बाबा. अच्छा एसन अरबानी वालेकुम अस्सलाम, छाला खुशायो. हजार खान कहते हैं सुबह शाम देखते हैं चेहरा हम सुबह और शाम को डॉक्टर लिखी दिनों तक चावल. एक दफो सुबह जो दिसो एक दफो शाम जो दिसो. ओके सो मां जमा का सवाल पुछवा तो तमा डेली पांजो मुंह जको आईने में केतरा चक्कर दिसना छ तमा के चीज जो अंदाजो आए बुधायो मुखे. और किशोर भाई कहते कि टॉपिक में सुबह ऑफिस जाते वक्त देखता हूं फिर वापस आकर देखता हूं, अगर छुट्टी हो तो दिन में 6-7 बार हो जाता है. अच्छा यानी तवाईडा सोना आयो ता पान के घड़ी घड़ी दिसता है. सुठी गाल है, सुठी गाल है. दर्द दिल आ चुकी है. वालेकुम अस्सलाम प्यारी कैसी हैं. और उदास लड़की कहती टॉपिक में तो ज्यादा देखती हूँ, फेस वॉश भी ज्यादा करती हूँ इसलिए मेरी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह. इतना ज्यादा भी मत किया करो कि भाई आपके चेहरे पर जो ऑयल है नेचुरल ऑयल वो ही खत्म हो जाए. जब आपके चेहरे पर जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो खत्म हो जाता है तब आपके चेहरे पर मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो आप जो फेस वॉश है ना वो 2-3 मरतबा किया करिए, इनफ होता है.

अच्छा किशोर भाई ईअं कयो ना त हिकिड़ो हिकिड़ो ड्रॉप विधो न त सभिनी जी शक्ति मिली वञे समुझो था एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बिल्कुल वैसे एक ड्रॉप की कीमत तुम क्या जानो दर्द दिल कहती है कि अल्लाह अच्छे लोगों का इम्तिहान बहुत लेता है मगर कभी साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को सब कुछ दे देता है मगर साथ नहीं देता बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी और चाचा खालिद जुड़ी जो मेरे साथ नाजुक दीदी टॉपिक को फॉलो किया है कहाँ फॉलो किया है यहाँ तो आपका सिर्फ मुझे यही स्टार्टिंग वाला मैसेज मिला है और बाकी शायद आपने पैनल पर मैसेज किए होंगे ओके जी देखते हैं पैनल के जाने भी आते हैं इकबाल लाशारी मेरे साथ मौजूद हैं कहाँ से सुन रहे हैं मीरपुर खास से सुन रहे हैं वेलकम करते हैं भाई जान को और इसके अलावा आदिल कहते हैं कि टॉपिक आंसर में जब घर से निकलता हूँ तब चेहरा देखता हूँ बस ना निकलो तब बस ये भी सही है

ही गानो ना माणून के डेडिकेट जे के वाईट ऐसा प्रोडक्ट लगायन पया सोना थी जाए अल्लाह सद्दिको ओके जी अली अकबर ब्रो ही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेंट से आपको वेलकम करते हैं खुश आमदीद के साथ साथ मेरी नाई सिद्रा शो मेरे दोस्त की शादी है और सॉन्ग प्ले कीजिएगा शादी वाला ओके ओके ओके इमरान खान रुक हमारे साथ मौजूद दी नाइस प्रोग्राम थैंक यू इमरान भाई मोहम्मद उर्स लगारी हमारे साथ मौजूद दी वालेकुम अस्सलाम टंडो अल्लाह यार से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम

रियाज अहमद लाहौर भी हमारा शो सुन रहे हैं. वेलकम. सारा खालिद कहते हैं मेरे मोबाइल सेट में आईना फिट, सो मैं 24/7 आईना देखता रहता हूँ. इससे मुझे अपने आप को समझने में आसानी होती है. क्या बात है, चाचा तो बाबा चाचा है ना. ये तो आज टॉपिक बड़ा सुंदर रखा है आपने, सच्ची बताए. अच्छा रियाज अहमद कहते हैं शो नाइस है आपका. वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम करते हैं आपको. और ये है जी चाचा खालिद कहते हैं खूबसूरती तो डी स्किन क्रीम से आसान और दिल की खूबसूरती व्हाइटिश लवली क्रीम से आसान. क्या मतलब, एक लगाते दूसरी खाते.

आज क्या बात करें, इतना प्यारा गाना लगाया आप लोगों के लिए। इरम भी हमारे साथ मौजूद है। इरम क्या कहती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लगा सकती हैं, सर्दियां हो या गर्मियां हो, ये जितने भी प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं ये सारे मौसमों के लिए है। तो अभी सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां चल रही है ना, तो गर्मियों में भी लगाइए, जब सर्दियां आएगी तब आप सर्दियों में भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। गोट मोमन तैयब थे बुखा भी बुला थे बुके थे तमाम जो शो वेरी नाइस आहे मुखे गानो बुधरा है जो तेरा मेरा है प्यार अमर बिल्कुल योगा ना जैसा जरूर बुधना से मां बुधायां थी त मां पंहिंजो मुंहुं मुबारक जेको आहे केतिरा दफ़ा जेको आहे न ॾींहं में ॾिसंदी वकास कहे थे फ्रॉम विलेज अली अच्छा शहदाद कोर से सही है, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। मेरे खास अब्दुल्ला महर वालेकुम अस्सलाम के थे बाजी मैंने मेरे फ्रेंड को वाइट एज ब्यूटी क्रीम गिफ्ट दी है, वाह साई वाह तमाम दोस्त जी अफा देरी सऊद देरी फ्रॉम नवाब शाह सलामती शो बेहतरीन है, बहुत शुक्रिया भाईजान को वेलकम करते हैं। और उसके अलावा हैं जी मीरपुर खासी अब्दुल्ला नहीं बल्कि शुएब महर हैं बाजी, कुछ लोगों का चेहरा साफ और दिल साफ नहीं होता, अब्दुल्ला महर को सलाम दीजिए इशारा होगा कहाँ गया वैसे चले यहाँ ऐसा वाक्य होता है, कुछ लोग सिर्फ चेहरे को साफ करने में लगे होते हैं, उनके दिल मेले हो चुके होते हैं, ऐसा भी मत किया करें, चेहरे के साथ साथ अपने दिल को भी साफ रखें, शफाफ रखें और साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल करती रहें और अपनी नियत का भी ख्याल करती रहें। और टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं मेरी जान, और उसके बाद जो है वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, तो आपने कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

आप इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए. और अपने चेहरे पर ये जो डार्क सर्कल्स हैं, ये जो एक्नी मार्क्स हैं, ये जो आपकी स्किन डल हो चुकी है, इन सब चीजों को खत्म कीजिए क्योंकि आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको मिल रहा है जनाब डी स्किन का फेस वॉश. क्योंकि अकेली क्रीम तो हम आप लोगों के लिए लेकर नहीं आते, उसके साथ आप लोगों के लिए सोप या फेस वॉश तो लाजमी होता है, होना भी चाहिए देखा जाए तो. तो डी स्किन का जब आप फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं जब आप डी स्किन के फेस वॉश को तो आपके दिल से बस एक ही ख्याल आता है कि ये क्या चीज बना दी है, इतनी जबरदस्त क्वालिटी दशात वाह. उन खां अलावा जो है हाइलोरोनिक एसिड है सीरम आहे जे अंदर जो तवाजी स्किन के अंदर वही करी तवाजी स्किन की खूबसूरती के मेंटेन कंदो आए, खूबसूरती के वधाइंदो आए, आई तवा के हमेशा खूबसूरत बनाए रखंदो आए. सो डी स्किन जो फेस वॉश जो तवा इस्तेमाल कंदा ताजी हर स्किन टोन जलाए उन खां वडी गाली आए तो तवा डी में बटरी दफा लगायो सुबह जो मंजन जो राजो लगाए करे स्किन के क्लीन रखो स्किन के खूबसूरत बनायो. तो डी स्किन जहाँ प्रोडक्ट तवाज मार्केट में अची वाया अगर नथा मिलन तो तवा करीबी जनरल स्टोर तवा मालूम करायो नथा मिलन तो तवा डायल कयो 03-1579-0595 03-1579-0595. मुख्य कड़ी शिकायत भी मिली था तवा नंबर ते रातो घट पया कयो हां छो ये छो कुटकी काईंदो वो का नंबर ते रातो कयो बाबा उनन के बुधायो त तवा जे केड़ी एरिया में अवेलेबल ना है किथे किथे मिलंदी हुई भी तवा उनन के बुधाय सको ता. सो जल्दी जल्दी बुधायो उन खा अलावा खूबसूरत ही ना मनो छो तो खूबसूरती तवा जे लाई हाने आसान थी वई है छो तो मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलन शुरू थी वई है. उन खा अलावा जेको आ तमो जमा खा सवाल पुछो तो तवा पंजो चेहरो जेको आ वो रोजाना यानी कि डी हमें केतरा दफा डिसंदा आयो शीशे में असांजी आदत हुंदी आ त घड़ी घड़ी पांजो चेहरो आईने में डिसंदा आयो घड़ी घड़ी डिसंदा आयो डिसो त छा थी वयो आ या जी जी स्किन ते एकनी हुंदा आ त वो विचारो परेशान हुंदा जी जी स्किन ते एकनी ना आ त वो उन के भी परेशानी हुंदी आ. अक्सर मु डठो आ मानन के त वो अलाई शो परेशान हुंदा आ. इंसान जे को आ न वो के भी हाल में राजी ना हुंदो असो इंसान जी फितरत आ इंसान डाढो ना शुक्रो आ. सो तवा जे को आ न अगर के भी वजह से परेशान आ एकनी आ तवा के या तवाजी स्किन में डलनेस अची वही है ये सब नॉर्मल जेके ना ये मसला हुंदा है जिंदगी जे अंदर उनन के तवा फेस करी सगो था उनन जे लाए तवा जे लाए अलग अलग मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार कया वया है जे मा तवा फायदो वठी सगो था इस्तेमाल कयो पांजी जिंदगी जो ये परेशानी त खत्म कयो बाकी परेशानी जो भी हल तवा वट मिली वेनो तवा के. सो पांजी खूबसूरती के मेंटेन रखो पांजी जिंदगी में खुश रहो. बाबा सनो प्रोग्राम बुधंदा रहो व्हाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो. अजो भला तमा में छो हाल कोने को छो ये चुप करे बैठायो तमा जो मैसेजेस किथे आए तमा जो कमेंट्स किथे आए.

बताओ कि जी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे जल्दी जल्दी से बताइए। चाचा खारे जो हमारे साथ जी पैनल पर, वालेकुम अस्सलाम चाचा, की आयो खुश आयो, खैर सब खुश है तब घर में। और चाचा खाले तुम गाने जी फरमाइश कई थोड़ो जो गाना तुम मुश्किल नहीं डिफिकल्ट बुधाय है, अगर मिली हो तो मैं हलाइंदम, न मिलो तो वही सुबाने को बो गानों बुधी वा सही हाँ सुबाने वैसे जुम्मो आ मुख्य लगे थे हाँ बाकी मैं सारी चीजें दुनिया की भूल सकती लेकिन अपनी छुट्टी नहीं भूल सकती मुझे निंद में भी पानी छुट्टी याद होती है। और वफा अब्दुल गफार खास के लिए मौजूद है फ्रॉम न्यू जतोई सिद्रा, मुस्कान आप कैसी हैं, मुझे मास्टर मंजूर का कोई भी गाना सुना दीजिए। ओके जी डन हो गया। एरम कहती हूँ मुझे जानी जब आपकी भाई मेरी भांजियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी, वो अकेले कैसे आ सकती हैं, बड़ी तो थी वही पर मतलब नंडड़ी रह जी हुई है तू दिमाग बारन वारो थे। वफा अब्दुल गफार खास के लिए तवां जो मोहब्बत आहिनि भा, सजाद अली खास के लिए तवां सगड आहिनि, ऐं दिलबर अली खास के लिए भी आहिनि, उन्हनि जी शादी आहे, उन जे लाइ तव्हां फायज़ा अली

गानो बुधन चाहियो था चलो ठीक है वैसे फायसा जकड़ो मु गानो लगायो पर शादी वारे गाने जी फरमाइश अच्छी पई तो भला करो शादी वारो गानो हणो था लिस्ट में जे में सबनी के राजी कयूं था ये फायसा जकड़ो हो ना शादी वारो गानो

साई वाज गानो हलायो आओ ना का अलावा अगर तमा से सगड मौजूद आए किथे वाइट एज जा प्रोडक्ट नथा मिलन किथे डी स्किन जा प्रोडक्ट नथा मिलन मुके जरूर लाजमी बुधाइंदा के असा के खबर पई त बाबा तमा वठो था नथा वठो तमा में हलचल आए या को न सिर्फ चुप करे सुमिया पयो पांजे घरन में अच्छा युसरा असांगे बुधी पर युसरा सिर्फ खाली पांजो नालो लिखी करे असांगे सेंड कंदी आ सो युसरा तवा जो मोहब्बत वान बाबा ता पांजो जनो सबूत दींदा आयो थैंक यू सो मच मकसूद मल्हा केते मेहरापुर से आपका शो सुन रहा हूं हेलो सिद्रा मुस्कान कराची गया था शॉपिंग करनी थी गुड बैकग्राउंड बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला थेबो केते सॉन्ग बुधराए जो हाजिर हाजिर भाड ता जो गानो पकवा ता माने सीट ते वेरो एरम केती आप ही प्लीज प्ले हाँ यू गानो बेलाइंदा सी मकसूद कहते हैं सदरा मुझे भी तो गाना सुनाओ मास्टर मंजूर का गाना भी लिस्ट में मौजूद है आप जरूर सुनेंगे जी और कहते मेहरापुर से आप हमारे साथ ही ओके जी सारे मैसेजेस के लिए आपका बहुत वाला शुक्रिया एक ही मैसेज को बहुत मतलब आपने शेयर कर दिया है थैंक यू जी फकीर राहिब माशूक मेमण मिठल मेमण आसिम मेमण बेरिया सिटी कोट बहादुर मौला इस्लाम मदद भाऊ खे चौं था भली करे आया और एरम चाहती जी आप ही जवाब है याद नहीं है जब मैं आईने में अपने आप को देखकर जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे अपने आप पर प्यार आता है वाह वाह ये अलग लेवल की बंदी है बाबा अच्छा प्रिंस अहमद अली रिंद हैं फ्रॉम अहमदाबाद वालेकुम अस्सलाम जी कहते स्वीट शो कल वाला हाँ जी बहुत शुक्रिया कल वाला शो आपको पसंद आया थैंक यू जी थैंक यू और ये हमारे साथ हैं तेरे सामने मेरा हाल तुम्हें क्या सुनाऊं ए दिलरुबा वालेकुम अस्सलाम बाजी क्या हाल है आपका शो अच्छा चल रहा है तमाम सुनने वालों को सलाम के बाद शायद आपका मैसेज जो है ना वो मिसिंग पार्ट हो चुका है पैनल पर जब भी मैसेज करें तो उसकी टाइपिंग जो है ना वो उर्दू वाली टाइपिंग मत लिखा करें क्योंकि ऐसे जो है ना थोड़ा मसला हो जाता है जब मैसेज मिसिंग पार्ट आ जाता है लफ्ज इधर के उधर हो जाते हैं तो अंग्रेजी वाली जो टाइपिंग ना वो लिखा करें और कश्यप हमारे साथ कहती आप बस क्या आपसे बहुत नाराज है अच्छा मुझसे क्यों नाराज है वैसे मैं तो मशरूम से बचा हूँ मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूँ

सईवा फायजा ली आई भलो गानो गाए थी उन खां अलावा जिन जूं शादियूं आहिनि ही गानो उन्हनि खे डेडिकेट आहे चाचा तव्हांजो ये मोहबतूं आहिनि बाबा चाचो ॾाढो भलो माण्हू अथव सभु ॿुधी छॾियो हिदायतुला चुप करे वेही रहो अब्दुल रज़ाक ज़रदारी मेरे साथ मौजूद है और ये हैं जी ऐसन कहते हैं कि चाप एक आइनो कंहिंजे हथ में हुजे या दीवार ते लॻल हुजे या किथे बि आइने ते नज़र पए चेहरो ॾिसी वठंदो आहियां सची ॿुधाईंदा मां बि कुझु ईअं ई कंदी आहियां

सोचा पई तो इन सभी प्रोडक्ट्स में जो है किशोर भाई कें भी प्रोडक्ट में यो नो आ हाँ हि हिं न होजी आ लगे छो तो हाँ इन दफे न चक्कर तवी हर फरमाइश से सब प्रोडक्ट खड़ी आई है यानी कि यो आए न तवा कि मा यो ऑप्शन या तो हाँ तवा जला ही वो प्रोडक्ट मोट आए को सब प्रोडक्ट पर हाँ वरी तवा के नाले में मसलो थी वो है ही नालो न ही नालो हो तो हणदी या सरासर बदमाशी आ बाबा कुटकी जा हकदार था पक्का आयो।

त कमु कोन हलंदो न ॾिसो कंहिंखे कंहिंखे साड़ थो थिए अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ माण्हू तव्हां खां सड़ंदव अला वैसे ई सड़ंदा आहिनि पोइ कुझु ज्यादा सड़ंदा सम्झो था ओके सो हज़ार भाई कहते ओके मेरा काम मेरे काम का टाइम हो गया चले भाई काम भी जरूरी है वाकई काम कीजिए बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे इतना टाइम और ये आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया टाइम भी बचाता है जरा हम भी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाने लगे तो आप बस यही मौजूद रहिएगा सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आ रही हूँ तो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो जो कि आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए

0: आप सुन रहे हैं
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर के रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ ही जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना की लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। ओके जी, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों को ये चीज तो कॉमन मिलेगी कि आप लोगों की खूबसूरती के ख्याल रखने के लिए ये प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर आप ही अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहते हैं तो जनाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इजीली आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाते हैं, वहां से मालूमात लेते हैं, नाम लेकर तलब करते हैं, आपको नहीं मिल रहे तो फिर आपको जो नंबर बताते हैं उस नंबर के ऊपर रब्ता कर लिया करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, आपके आसपास के लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। तो नंबर है 03-15-799-0595। नंबर डाल करती रहिए ताकि आपके सिटी में भी आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए बिल्कुल जी ये सारे प्रोडक्ट्स ताकि आप आराम से जाकर परचेज कर सकें। तो जल्दी जल्दी जाइए अवेलेबल।

गानो एतरो खूबसूरत आ ना बुधी करे मतलब ही डाडू भलो महसूस थिंदो आ ही गानो मुखे डेडिकेट होयो और ये आपके मैसेजेस हैं जिनको हम जाहिर सी बातें पढ़ेंगे. अच्छा पैनल की जाने बातें हैं तो एक मिनट मैंने कहा था कि आपके मैसेजेस पढ़े. अच्छा हाँ ये हमारे साथ फिरदौस भाई हैं और फिरदौस भाई कहते हैं अच्छा क्या मतलब आपने ये शायरी लिखी है. अच्छा कहते हैं तुमने ऐसा किया मेरे जख्मों का इलाज कि मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से. मरहम भी लगाए वो भी कांटों की नोक से. वाह वाह वाह वाह.

बड़े दिनों के बाद हमने ये गाना सुना है, उसी के साथ साथ ये गाना बस उनको डेडिकेट करते हैं जिनको ये अच्छा लगेगा. और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बता दिया करें, ठीक है, शर्माया मत करें. और चाचा खालिद कहते हैं, भला पो ही वारो गानो हलायो, माँ भी केडो सिदरा चलो आया, तुझे शो में वरी वरियो आया, छो भला मना है मुझे शो में अचण का, हाँ जो शो आ ता नहीं ना तो बाकी केर

होता है ओके वो डेडिकेट, ये जरा राज की बात है, वो राज में रखी जाएगी. अच्छा ये सकलीन अब्बास हमारे साथ है. सकलीन अब्बास आपको वेलकम इन खुशामदीद.

लोगों को कंफ्यूज इस तरह बिल्कुल इस तरह किया जाता है. अच्छा संजय जी पाल भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो संजय भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं. हाँ जी बिल्कुल. अब आपके कमेंट्स पर यानी कि हाँ ने मुझे दिल जी को आने थोड़ी राजी थी या ये थोड़ा कमेंट करना है मजो ना आई तो वाला सिद्रा के लाई लाई कॉमेंट्स याद है तो विजी चली था ना एनर्जी के ये बिगाड़े भी तो ता आए ना मच्छी फट के मच्छर जे जा में मुझे दिल. अच्छा दर्दी दिल बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका. नवाजिश जी नवाजिश. अच्छा ये हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान जी. आप कैसी हैं? मैं सफा भलिया यहाँ और कहती हूँ सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड सब लड़कियों को और कहती हैं कि टॉपिक बहुत मर्तबा देखती हूँ. बहुत मर्तबा से मुराद अच्छा चले ही जे को गानो ना ही असा फजीला सिंधी जे तरफा उन जे हस्बैंड के डेडिकेट कयूं था. ठीक है.

अच्छा सच्ची बताऊँ, मैं जब ब्रेक पर जाती हूँ ना, ब्रेक में होती हूँ तो मैं खुद बोर हो रही होती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी ब्रेक में मेरा इतना असर जो है, मुझे तो 4-5 घंटे मिलने चाहिए बकबक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत बोलने वाला इंसान हूँ. तो थोड़ा लगता है, समझ रहे. और उसके साथ साथ जो है ना, ये बहुत ही प्यारा गाना हमने एंजॉय किया. और जिन लोगों ने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से कीजिए. और अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595. अगर आप ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595.

अच्छा एसन वैसे तव्हां चओ सही था पर तव्हांखे बि जेको आहे न जुमेवार ॾींहुं मोकल हूंदो आहे न मुंहिंजी मोकल त माना तव्हांजी बि मोकल सभिनी जी मोकल सभु मज़े करेंगे अच्छा ये नोरिस एंटोनियो भाई हमारे साथ मौजूद हैं क्या बात है एंजॉय करें एंजॉय करें वासु भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो वासु भाई प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम बहावल नगर से हमारा शो ज्वाइन कर चुके हैं थैंक यू जी वेलकम करते हैं आपको

अच्छा कहते हैं खाना ज्यादा खाते हैं ईद में, ये भी लोग अलग लेवल के बंदे वाकई भाई। गर्मियों में जब लोग बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं, बहुत ज्यादा खाने खाते हैं, तो मैं खुद ही सोचती हूँ वैसे माई चवंदी आहे माण्हू चवंदा आहिनि ईद वारी ॾींहुं इलाही मानी खाईंदा आहिनि माण्हू, पर मां उहो वाहिद इंसान आहे जेको ईद वारी ॾींहुं शायदि मानी न खाईंदो आहे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वाला खाना देकर मेरा पेट भर जाता है।

लेकिन ईद से पहले आप लोगों ने व्हाइट ईस्ट की लवली क्रीम लाजमी लेनी है, ताकि आप ईद पर जो है ना, अगर तैयार होना आपको बहुत मुश्किल लगे तो बस आप व्हाइट ईस्ट की लवली क्रीम थोड़ी सी मिकदार में लगा ली चेहरे पर, यूं आप रेडी हो जाएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह चिलके तो चिलके थी छा लगायो थी। अरे स्मार्टो गोपाल कहते हैं कि सिद्रा मुझे नहीं भी ऐसे इसीलिए कहते हैं ना कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, पहले खुद देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि ते न लॻंदा कयो पोइ ईअं ई तव्हां हमेशह बेवकूफ़ थींदा रहंदा ज़िंदगी में। उन खां अलावा जेको आहे सो जेको आहे तेको आहे तेको आहे जेको आहे हीउ वारो गानो त लाज़मी हूंदो आहे असांजे प्रोग्राम में, अगरि हू ॿुधंदा त हीउ वारो त लाज़मी ॿुधंदासीं। सुभाणे सोचां पई त हाणे तव्हां खां इजाज़त बि वठूं, ठीकु आहे। चाचू चए थो तव्हां लंच कयो असांखे फॉर्चूनर घुर्जे। राज़ की बातें वैसे असांखे बि।

अच्छा दर्दी दिल कहती है कि टॉपिक चंदा, एक तो सुबह उठते ही देखती हूँ, फिर काम से फारिग होकर देखती हूँ, फिर तुम्हारा शो सुनते सुनते देखती हूँ, 20 से 25 बार तो कर ही ले शायद इतनी मर्तबा भाई अल्लाह वैसे वाकई गाना तो शायरी वाला है, लेकिन आज जरा शायरी वाला मूड नहीं था तो बस छुट्टी दे दे मेरे को, माफ कर दो। अच्छा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी होने वाली है जी कल नहीं बल्कि परसों वाले प्रोग्राम में, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अगर कहीं पर कोई गलती हो गई हो मुझसे नाचीज से तो माफ कर दीजिएगा, और आप जो है ना वो वाइट एज के प्रोडक्ट इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। वैसे वाइट एज के प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये भी आप मालूमात जरूर जो है ना वो लिया करें ताकि आपको ये पता चले कि हम कहां से जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल किया करें 03-15-799-0595, ठीक है। वैसे जाने का तो मेरा भी दिल नहीं कर रहा आज, पता नहीं कि आप लोगों से बातें करने का दिल कर रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का लगा रहा है कि भाई जा अब तू, तो यस यस मैं जा रहा हूँ। सो भाई मुकलानी नाइस, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास, GFM 88 की आवाज।
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्वेटा के शहर चमन फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसी जा टे जवान भी शामिल। वरे वजीर सरफराज बुख्टी के बावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद दहशतगर्दन मासूम शहर के निशानो बनाया। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी चो दहशतगर्द जा सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाण चाहन था चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उनके सरपरस्तन जो आसूल चेहरो डिसे। वजीर आजम चो धमाके सबब मासूम जानू विंजायजी व्यू। दहशतगर्दन जो अड़ी बुजरानी कार्रवाई पाकिस्तानी आवाम जो आजम कमजोर न थी कर सकन। दहशतगर्दन के पाण का पटन वाले आजम से कायम आयू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तानी दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तहकम करने वाली साजिशों नाकाम थी। पूरी कौम दहशतगर्दी पाकिस्तान

केपी जे इलाके बनू में पाक फौज पुलिस टिडी जो गडल ऑपरेशन सिक्योरिटी चरण मूजिब ऑपरेशन में 16 कार जी मारजी व्या ब पुलिस एहलकार शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस चवण आहे त ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि ठिकाणनि खे तबाह कयो वियो पाक फौज ऐं पुलिस समेत ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीनी कंपनियुनि विच में वफ़ाबती यादाश्तनामनि ते सहियूं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन जे शहर हांगज़ू में बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे चयो त असां पाक चाइना दोस्ती जा 75 साल मुकमल थियण जो जशन मल्हाए रहिया आहियूं चीनी सदर जंग पिंग जे चीन खे आलमी मुआशी अस्करी ताक़त बणायो ऐं पाकिस्तान ज़खीरा सिड़पकारी जी घुर्ज आहे ईरान आमना हुर्मज खोलींदो ऐं का फीस न वठंदो पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तम कंदो अमरीकी मीडिया खां इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादी सां तेल विकिणी सघंदो उहो सभु डील तहत 60 ॾींहं जी जंगबंदी में वाद दौरान थींदो वफ़ामती यादाश्त में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो रचाओ थियल यूरेनियम जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो ईरान मुआहदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवणनि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इमारती सदर तुर्क सदर मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं मुआहदे बाद अॻियां हुरमज़ बि खोलियो वेंदो डील बावजूद आबन हुरमस ते असांजो कंट्रोल हूंदो तर्जमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो चवणु आहे त आबन हुरमस खां गुज़रण जो वक़्तु मेरी टाइम लाइसेंस ईरानी अख़्तियारियूं जारी कंदियूं ईरानी परॾेही तर्जमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त एमओयूज़ आख़िरी मरहले में आहिनि तफ़सीली ॻाल्हियूं 1 खां 2 महीननि ताईं जारी रही सघनि थियूं ईरान ऐं अमरीका विच में डील जे वेझो पहुचण वारनि ॻाल्हियुनि वक़्त खां अॻु जूं आहिनि ईरान जो एटमी प्रोग्राम अञा बहस हेठि नाहे

0: अमरीका ईरान विच में गालियुनि जो बियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाकाण जोगियूं आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-335-69।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए।
2: Brought to you by Suncrop Group ka Diamond Hybrid Rice Seed.

कोयटो जे शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी पयो। शहीदन में एफसी जा 3 जवान भी शामिल। वरे वजीर सरफराज बख्शी जे मावन शाहिद रिन जी तस्दीक शायद रिन चयो त दहशतगर्दन मासूम शहरन के निशानो बणायो। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी दहशतगर्दन उन सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने चाहन था। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाय कोशिश के भी नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उन सरपरस्तन जो असल चेहरो डिसे। वजीर आजम धमाके सबब मासूम जानू विजाजी व्यू। दहशतगर्दन जो अड़ी बुजरानी कार्रवाई पाकिस्तानी आवाम जो आजम कमजोर नथियों कर सकन। दहशतगर्दन के पहाड़ का पटन वाले आजम से कायम आयू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क आए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तहकम करने वाली साजिशों नाकाम थन्दियों। पूरी कौम दहशतगर्दी पाकिस्तान के अमन खिलाफ साजिश खिलाफ है। केपी के इलाके बनू में पाक फौज पुलिस सिटडी जो गडियल ऑपरेशन सिक्योरिटी जरिए मूजिब ऑपरेशन में 16 खारजी मार ब पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी कोशिशों के भी नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन पुलिस समेत बिन सिक्योरिटी इदारन पारा दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन जारी है।

0: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रस्ती में सरगर्म नेटवर्क आए। पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तहकम करने वाली साजिशों नाकाम थन्दियों। पूरी कौम दहशतगर्दी और पाकिस्तान के अमन खिलाफ थन्दड़ साजिशन खिलाफ आ। केपी के इलाके बनू में पाक फौज पुलिस सिटडी जो गडियल ऑपरेशन सिक्योरिटी जरन मूजिब ऑपरेशन में 16 खारजी मारज गया, ब पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी ईरान अब न हुरमत खोलींदो का फीस न वठंदो, पंहिंजे विछायल माइंस हटाईंदो। अमरीका जवाब में नाकाबंदी खत्म कंदो। अमरीका मीडिया अमकानी डील जा अहम नुक्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी अहदेदार मूजिब ईरान आज़ादी सां तेल विकणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहनि जी जंगबंदी में वाद दौरान थींदो। मफ़ामती यादाश्त में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाउ थियल यूरेनियम जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो ऐं डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। ईरान मुआदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि। डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, इमारती सदर, तुर्क सदर, मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं। मुआदे बाद अबन हुरमज़ बि खुली वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मुशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी, वारन ऐं नहन, एलर्जी, कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
6: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195715724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4

0: पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सिस पर रही मदद से थींदड़ दहशतगर्दी दौरान खारजी दहशतगर्द मारिजी विया, ॿ पुलिस अहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सिस जो चवण आहे त ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जे ठिकाननि खे बि तबाह कयो वियो। पाक फ़ौज ऐं पुलिस समेत ॿियनि सिक्योरिटी इदारनि पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे।

कोटिया के शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसीए जा 3 जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी के मावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद है तो दहशतगर्दन मासूम शहरन के निशानो बनाया है। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी तो दहशतगर्दन और उन सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने चाहन था। उ दहशतगर्द पाकिस्तान के अमुन लाय कोशिशन के नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन और उन सरपरस्तन जो असुल चेहरो डिसे। वजीर आजम तो धमाके सब मासूम जानू विजाई व्यू। दहशतगर्दन जो अड़ी बुजदलानू कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम जो अजम कमजोर न थी कर सकन। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तक करण वाल साजिशों नाकाम थन्द। वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी ए बलोचिस्तान के वे वजीर सरफराज बुख्टे की सदारत ठहम इजलास। आईजी बलोचिस्तान इजलास के चमन फाटक वेझो धमाके की शुरुआती रिपोर्ट पेश कई। मोहसन नकवी तो वैशन चमन में मासूम शहरन से हमलो कर शर्मनाक अमल जो मुजाहरो कयो। सरफराज बुख्टी जो चवण हो तो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दन के मंतकी अंजाम से पहुंचाया वेंदो। शहीदन के कुटुंबन के अकेलो न छड़ींदासीं। जख्मियों के इलाज लाए मां पान निगरानी कर रहो आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ए नायब वजीर आजम इसहाक डार की मौजूदगी में पाकिस्तान ए चीनी कंपनियों विच में मुफामती याददाश्त नाम से सयूं। वजीर आजम चीन के शहर हांगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे असा पाक चाइना दोस्ती जहा 75 साल मुकम्मल थन जो जश्न मल्हाए रहा आयूं। सदर शी जिनपिंग चीन के आलमी मुआशी अस्करी ताकत बनाया। पाकिस्तान में मैदनियात जहा वा जखीरा मौजूद है। सीड़पकारी की घुर्ज है।

ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलींदो ऐं काफ़ीस न वठंदो, पंहिंजा विछायल माइंस हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकाबंदी ख़तमु कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिबि ईरान आज़ादीअ सां तेल विकिणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहनि जी जंगबंदीअ में वाद दौरान थींदो। मुफ़ामती याददाश्त नामनि में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रचाव थियल यूरेनियम जी ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो। ईरान मुआदे ते ॻाल्हियूं मुकमल थियण ते आहिनि। डील जो ऐलान जल्द थी सघे थो। ट्रंप चयो आहे त मुस्लिम मुल्क जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल हाकारी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वलीअ मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर, तुर्क सदर, मिस्र जे सदर ऐं कतर जे अमीर सां बि फोन ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। मुआदे बाद आबडाए हुर्मुज़ बि खोलियो वेंदो। डील बावजूद आबनाए हुर्मुज़ ते असांजो कंट्रोल हूंदो। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो चवणु आहे त आबनाए हुर्मुज़ खां गुज़रण जो वक़्तु ऐं मेरी टाइम लाइसेंस ईरानी अख़्तियारियूं जारी कंदियूं। ईरानी परडेही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त MOUs आख़िरी मरहले में आहिनि। तफ़सीली ॻाल्हियूं 1 खां 2 महीननि ताईं जारी रही सघनि थियूं। ईरान ऐं अमरीका विच में डील जे वेझो पहुचण वारियूं ॻाल्हियूं वक़्त खां अॻु जूं आहिनि। ईरान जो एटमी प्रोग्राम अञा बहस हेठि नाहे। अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो बि॒यो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्कनि जे अॻवाननि सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखाण जोगियूं आहिनि।

0: नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो चवण है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम अगवाणनि सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। ॻाल्हियुनि दौरान हाकारी नतीजनि जी उमेद पैदा थी आहे। पाकिस्तान खिते में पायदार अमुन गॾियल एतिराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिश जारी रखंदो। खिते ऐं दुनिया जे अमुन लाइ छिकताण न पर ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारीअ खे तरजीह ॾियणी पवंदी। पाकिस्तान ज़रिए उमाणियल नई तजवीज़नि में लबनान में जंगबंदी बि शामिल आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास राख़्ती चयो आहे त तेहरान जो ज़ोर आहे त जंग ख़तम थियण जी कंहिं बि मुआदे लाइ लबनान में जंगबंदी मुआदो लाज़मी हूंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: शदीद गर्मी के बाय शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। ये अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PTMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।

0: फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: क्या देख रहे हो?
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: क्या देख रहे हो
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अंबा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303 5592120
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301 91 896।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

उत्तर बलोचिस्तान दताखिल में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन 11 खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। ISPR मुजिब सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारजी दहशतगर्दन के मारे वो मारजी वेल भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी दहशतगर्दन वटा हथियार ए बारूदी मवाद मिलो है। मारजी वेल खारजी दहशतगर्द दहशतगर्दी के केतरन ही कार्रवाई में मुलविस हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज परडेही मदद से दहशतगर्दी के खात्मे लिए पुरजम है। KPJ इलाके बनू में पाक फौज पुलिस ए CTD जो गडल ऑपरेशन सिक्योरिटी जरन मुजिब ऑपरेशन में 16 खारजी मारजी वया। पुलिस अहलकार भी शहीद। सिक्योरिटी फोर्स जो चवण है ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दन के ठिकानन के तबाह किया। पाक फौज ए पुलिस समेत बेन सिक्योरिटी इदारन पारा दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन जारी है।

0: कोटिया के शहर चमन में फाटक धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी वयो। शहीदन में एफसीए जा 3 जवान भी शामिल। वडे वजीर सरफराज बुख्टी के मावन शाहिद रिंद की तस्दीक। शाहिद रिंद है तो दहशतगर्दन मासूम शहर के निशानो बनाया है। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी तो दहशतगर्दन उन्हन जा सरपरस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने चाहन था। उहे दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाए कोशिशन के नुकसान रसायण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उन्हन जे सरपरस्तन जो असल चेहरो दिसे। वजीर आजम तो धमाके सब मासूम जानू विंजाई व्यू। दहशतगर्दन जो अड़ी बुजतलानियों कार्रवाईों पाकिस्तानी अवाम जो अजम कमजोर न थी कर सकन। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तक करण वाल साजिशों नाकाम थन्द।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राबते जे लाए 03201800003।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03519155724।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: अलहमदिल्ला डॉक्टर साहब घुमायो आ, बाकी अल्लाह ताला जी हिकड़ी जेका मैन्युफैक्चर आहे उन जी केयर भी नथो करे सके।
1: अल्लाह जो शुक्र आहे असां घुमाऊं था पिया था पर हथ कम नथो करे।
0: हथ कम नथो करे इंशाल्लाह इन में तव्हांजो इहो सुन थियल हूंदो। इंशाल्लाह तव्हां डॉक्टर साहब खां रेगुलर मुसलसिल इलाज करायोसि, अलाह में उमेद आहे रिज़ल्ट मिलंदो तव्हांखे। ईअं ई हिकिड़ो दोस्त डॉक्टर साहब वटि ईंदो गंभड़ जो, उहो बि ईअं हुनजो बि हथ बि कम न कंदो हो, ॿांहुं मथे बि न करे सघंदो। अलहमदिल्ला डॉक्टर साहब वटि उहो माण्हू हाणे ईंदो आहे त चवंदो आहे साईं मुंहिंजो हथ बि कम करे थो, आङरियूं बि कम कनि थियूं। हाणे गंभट मां जेको छॾे करे हिते अचे थो डॉक्टर साहब वटि, इन मां अंदाज़ो लॻायो त अल्लाह ताला जी का देन आहे, अलाह ताला जी तरफ़ां का शिफ़ा आहे, तॾहिं माण्हू अचनि था। डॉक्टर साहब वटि एतिरी रश ॾिसो हूंदी आहे, पर इहे डॉक्टर साहब जो महिरबानी आहिनि असांजे करे एफ एम ते अचे थो ऐं अव्हां जहिड़े दोस्तनि खे मालूमात ॾियण जे लाइ भई हिन बीमारी खां हीअं बची सघिबो, हिन जो ई इलाजु आहे, हिन जो ई इलाजु आहे। ठीकु आहे साईं, वधीक एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहब तव्हांखे ॿुधाईंदो। जी सर डॉक्टर साहब।
2: हाजी सर बिल्कुलु, जेकॾहिं अदे पहिरियां बि पुछियो आहे त असांजो पहिरियां बि अदे खे इहो ई जवाबु हूंदो त तव्हां रूबरू अचो, ऐं हाणे बि अदे खे इहो ई चवंदासीं त बिल्कुलु रूबरू अचो, छो जो फालेज पैरालाइसिस यानी पैरालाइज़्ड हिकिड़ी जेको ॿांहुं थी वञे, यानी उन में खोड़ सारियूं वजूहात हूंदियूं आहिनि, ब्लड सर्कुलेशन ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि, रगूं डेमेज थी वेंदियूं आहिनि, त जॾहिं हिकिड़ी शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, पर अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं केसिस असां वटि आया आहिनि ईंदा आहिनि त हुननि खे जॾहिं दवाऊं ॾींदा आहियूं त अलाह ताला जी महिरबानी सां हू बिल्कुलु ठीकु थी वेंदा आहिनि। हाणे बि अंडर ऑब्ज़र्वेशन असां वटि ॿ चारि अहिड़ा पेशंट आहिनि, पर अलाह ताला जी महिरबानी सां रिसेंटली अॼु बि हिकिड़ो पेशंट आयो जंहिंजो लेडीज़ पेशंट हो, जंहिंजो बिल्कुलु इहो हिकु ॿांहुं जेको आहे हुनजी सुन हुई, लेकिन हाणे हुनजी ॿांहुं उहा हल्की थी आहे ऐं हुन में इम्प्रूवमेंट अचणु शुरू थी वई आहे। इहो अलाह ताला जा लख अहसान आहिनि। सो अधे खे ॾिसी ॾींदासीं, ज़रूरु जेको ज़रूरु भरू ॾेखारे।
0: हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गदगद जो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर एफ एम 94।
3: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो

0: एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
0: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरत हाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
0: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अॼु अव्हां ॿुधी सघंदा। वॾी ईद जूं वॾियूं मोकिलूं, सिंध हुकूमत ऐलान करे छॾियो। सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी, पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान, शहरनि खे गैर ज़रूरी तौर घरां न निकिरण जो मशवरो। औरतुनि खे बाख़्तियार बणाइबो, मुफ़्त स्कूटी ट्रेनिंग ऐं ड्राइविंग लाइसेंस ॾींदासीं, शर्जील इनाम में मिणो। सरकारी मनसूबनि ते मुक़ररु 85 मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम। प्रोग्रामिंग करप्शन स्कैंडल जी जांच तेज़, ऑयल मेंबर तलब। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध में पाणी जी खोट ऐं ज़रई बुहरान। सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा जे चई ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे। सिंध हुकूमत पारां उन हवाले सां नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। उन नोटिफिकेशन मूजिब ईद उल अज़हा जे मौके ते 24 मई खां 29 मई ताईं मोकलूं हूंदियूं। वाज़े रहे त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईद उल अज़हा जे मौके ते 3 ॾींहनि वारनि मोकलुनि जो ऐलान कयो वियो आहे, जेकी 24 मई खां 29 मई ताईं हूंदियूं। मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे। मौसमियात खाते जो चवणु आहे त 25 मई खां 31 मई ताईं गर्मी पद मामूल खां 6 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं वधी सघे थो। मौसमियात खाते मूजिबि सिंध जे अंदरूनी ज़िलनि में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड ताईं पहुचण जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते शहरनि, आबादगारनि ऐं बुज़ुर्गनि खे हिदायत कई आहे त हू गैर ज़रूरी तौर ॿाहिरि निकिरण खां पासो कनि ऐं सख़्तु गर्मीअ खां एहतियाती उपाव इख़्तियार कनि। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त सॼे सूबे में मंशियात जे नासुर ख़िलाफ़ बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई जारी आहे ऐं ज़हर पखिड़ींदड़ अंसरनि ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोॻो आहे। हुन वाज़े कयो आहे त धरतीअ खे मंशियात खां पाक करणु असांजी पहिरीं तरजीह आहे। हैदराबाद में हिकु तक़रीब खे ख़िताब कंदे सूबाई वज़ीर अनमोल नाले औरत जो हवालो ॾींदे चयो त हुन समाज में ज़हर फैलाइण जी कोशिश कई, जंहिं ते कानून हरकत में आयो। हुन चयो त सूबाई हुकूमत जिते हिकु तरफ़ ॾोहनि ऐं मंशियात ख़िलाफ़ विढ़ी रही आहे, उते ॿिए पासे औरतुनि खे बाइख़्तियार बनाइण लाइ तारीख़ी क़दम खणी रही आहे। शर्जील इनाम मेमण ऐलान कयो त सिंध हुकूमत औरतुनि खे बिना मुआवज़े स्कूटी तरबियत ऐं ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करे रही आहे ऐं उहा विर्छ निज मेरिट जे बुनियाद ते कई पई वञे। हुन चयो त हाणे वकील बिरादरीअ सां तालुक़ु रखंदड़ औरतुनि खे बि पिंक स्कूटी मुफ़्त ॾिनी वेंदी, जॾहिं त औरतुनि लाइ धार पिंक बसूं अॻु ई कामयाबीअ सां हलायूं पियूं वञनि। सूबाई वज़ीर तवानाई ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर ते ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में सस्ती बिजली जी पैदावार रुॻो थर जे कोयले सां ई मुमकिन आहे ऐं सिंध सरकार उन जहिड़ा सभु वॾा ऐं अवामी फलाही मनसूबा कामयाबीअ सां शुरू कया आहिनि, जंहिंजे दायरे खे हाणे वधीक सूबे ताईं फहिलायो पियो वञे। सिंध हाई कोर्ट जे आईनी बेंच मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़ररु 85 खां वधीक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हाई कोर्ट जे आईनी बेंच आॾो मुख़्तलिफ़ सरकारी मनसूबनि में कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक बुनियादनि ते मुक़ररु मुलाज़मनि जी मुस्तक़िली बाबति दरख़्वास्तुनि ते ॿुधणी थी। वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त दरख़्वास्त गुज़ारनि खे सिंध हुकूमत जे मुख़्तलिफ़ मनसूबनि में मुक़ाबले वारे अमल ज़रिए मुक़ररु कयो वियो हो ऐं उन्हनि जी नौकरियुनि में साल ताईं वाधि कई वेंदी रही। अदालत रिमार्क्स ॾिना त सिंध रेगुलराइज़ेशन कानून तहत दरख़्वास्त गुज़ारनि खे मुस्तक़िल कयो वञणु घुरिजे, जेतोणीकि कॉन्ट्रेक्ट मुलाज़मनि खे मुस्तक़िलीअ जो हक़ बुनियादी हक़ तौरु हासिल नाहे, पर सिंधी असेंबली कॉन्ट्रेक्ट ऐं एडहाक मुलाज़मनि खे मुस्तक़िल करण जे लाइ ख़ासि कानून साज़ी कई आहे। सिंध हाई कोर्ट चयो त उहे कानून सालनि ताईं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदड़ मुलाज़मनि खे तहफ़ फराहम कनि था। हुकूमत बिना कंहिं इम्तियाज़ी सलूक जे समूरनि अहल मुलाज़मनि खे कानून जो फ़ाइदो ॾियण जो पाबंद आहे। ओग्रामी मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल जी जांच में वॾी अगभराई, मेंबर ऑयल तलब। शुरूआती शाहिदनि जे रोशनीअ में ओगरा जे मेंबर ऑयल जे किरदार बाबति अहम सवाल साम्हूं अची विया। FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची, ओग्रामी मुबैना मेगा करप्शन, पेट्रोल स्टॉक्स में हेराफेरी, क़ौमी ख़ज़ाने खे नुक़सान पहुचाइण ऐं रेगुलेटरी अख़्तियारनि जी मुबैना ग़लति इस्तेमाल वारे मामले जी जांच तेज़ीअ सां जारी रखी वई। दस्तावेज़नि मूजिबि FIA CC कराची इंक्वायरी नंबर
43,026 तहत ओगरा जी मेंबर ऑयल ज़ैनुल आबदीन कुरेश के बाकायदा कॉल अप नोटिस जारी कदे 25 मई 2026 सूमर के दिन सुबह जो 9 बजे जाती हैसियत में तलब करे वरतो है। इंक्वायरी में गो पेट्रोल समेत केतरन ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों खिलाफ पेट्रोलियम शेयर जा जखीरा लिकायण गलत रिपोर्टिंग प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स मुबैना फ्रॉड रेगुलेटरी एहलकार टर्मिनल ऑपरेटर से मिली भगत के इल्जाम जो जायजो वरतो पियो वे केस में अहम शख्सियतों के तलब करण जो इम्कान जाहिर किया पियो।

आहे स्पेशल रिपोर्ट। पाणी जी खोल इस्लाम सां गॾु ज़रई खुशहालीअ जी अलामत समझो वेंदो हो। अॼु पाणी जी शदीद खोट सबब सख़्त बुहरान खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। दरियाए सिंध जे वाकुरनि में घटताई, गैर मुनसफ़ाणी पाणी विर्छ, मौसमी तब्दीलियूं ऐं नाक़स पॉलिसियूं सिंध जी ज़रात खे तबाहीअ जे किनारे ते आणे बीहारियो आहिनि। ॻोठाणनि इलाइक़नि में आबादगार सख़्त परेशान आहिनि। केतिरनि ई दिलनि में वाहन ऐं शाखुनि में पाणी न हुजण करे हज़ारे एकड़ ज़मीन बंजर बणिजी रही आहे। कणक, सारिन, कमंद ऐं सब्ज़ियुनि जा फ़सुल सख़्त मुतासिर थिया आहिनि, जंहिं सबबि न सिर्फ़ आबादगारनि खे माली नुक़सान पहुतो आहे पर ख़ुराक जी खोट जो बि ख़तरो पिणु वधी रहियो आहे। आबादगारनि जूं दाहूं। आबादगारनि जो चवणु आहे त असां सॼो साल कर्ज़ु खणी ॿिज, भाण ऐं ज़रई दवाऊं वठूं था, पर पाणी न हुजण करे फ़सुल सुकी वञनि था। केतिरनि ई नंढनि आबादगारनि माल व मवेशी विकिणी गुज़र सफ़र करण ते मजबूर थी विया आहिनि, जॾहिं त नौजवान रोज़गार जी तलाश में ॻोठ छॾे शहरनि ॾांहुं मुंतक़िल थी रहिया आहिनि। माहिरनि जी राय। ज़रई माहिरनि मुताबिक़ मौसमी तब्दीलियूं, पाणीअ जे नाक़स इंतज़ाम, ग़ैरक़ानूनी पाणी चोरी ऐं पुराणो आपाशी निज़ाम सिंध जे ज़रई बुहरान जा अहम सबबु आहिनि। माहिरनि ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं पाणीअ जे मुनसफ़ाणी विर्छ ऐं जदीद आपाशी निज़ाम ते ध्यानु न ॾिनो वियो त ईंदड़ सालनि में सिंध में ख़ुराक जो वॾो बुहरान पैदा थी सघे थो। अवामी ख़दशा। सिंध जे माण्हुनि जो मुतालबो आहे त पाणी जी मुनसफ़ाणी विर्छ यकीनी बणाई वञे, वाहन जी सफ़ाई कई वञे, टेल ताईं पाणी पहुचायो वञे ऐं आबादगारनि जे लाइ ख़ासि इमदादी पैकेज जो ऐलान कयो वञे। पाणी सिर्फ़ ज़रई ज़रूरत न आहे पर सिंध जी मईशत, सकाफ़त ऐं ज़िंदगीअ जो बुनियादु आहे। जेकॾहिं पाणीअ जो मसलो हल न थियो त सिंध जी ज़राअत सां गॾु लखे माण्हुनि जो मुस्तक़बिल पिणु ख़तरे में पइजी सघे थो। हुकूमत, माहिरनि ऐं आवाम खे गॾिजी हिन बहिरान जो मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो, न त ॿी सूरत में ईंदड़ वक़्तु वधीक ॾुखियो थी सघे थो। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब ख़ान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राब्ते दे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-8196-851
1: छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो छा कजे
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
2: न अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
1: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8743

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सिद्ध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा वडी ईद जो वडियो मोकलूं सिंध हुकूमत ऐलान करे छड़ियो सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान शहरन के गैर जरूरी तौर घरां न निकरण जो मशवरो औरतुन के बाख्तियार बनाइबो मुफ्त स्कूटी ट्रेनिंग ऐं ड्राइविंग लाइसेंस ॾींदासीं शर्जील इनाम मेमण सरकारी मनसूबन ते मुकरर 85 मुलाज़मन के मुस्तकिल करण जो हुकुम प्रोग्रामिंग करप्शन स्कैंडल की जांच तेज वाइल मेंबर तलब स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा सिंध में पानी की खोट ऐं ज़रई बुहरान सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा के चई दिन वाले मोकलों जो ऐलान किया वो है सिंध हुकूमत पारा उन हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया वो है उन नोटिफिकेशन मूजिब ईद उल अज़हा के मौके से 24 मई का 29 मई तीन मोकलू होंद वाजे रहे त वफाकी हुकूमत पारा ईद उल अज़हा के मौके से टिन दिन वाले मोकलों जो ऐलान किया वो है जी 24 मई का 29 मई तीन होंद मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो खदशो जाहिर कर छो है मौसमियात खाते जो चवण है त 25 मई का 31 मई तीन गर्मी पद मामूल का 6 दर्जा सेंटीग्रेड तीन वधी सके तो मौसमियात खाते मूजिब सिंध के अंदरूनी जिलों में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड तीन पहुंचने जो इम्कान है मौसमियात खाते शहरन आबादगार बुजुर्गन के हिदायत कई है तो वह गैर जरूरी तौर बाहर निकलण का पासो कन सख्त गर्मी का एहतियाती उपाव इख्तियार कन सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमण है तो सजे सूबे में मंशियात के नासुर खिलाफ बिना फर्क के कार्रवाई जारी है जहर पखड़ींदर अंसरन खिलाफ सिंध हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोगो है उन वादे है तो धरती के मंशियात का पाक करण असांजी पहरी तरजीह है हैदराबाद में एक तकरीब के खिताब कदे सूबाई वजीर अनमोल नाले औरत जो हवालो डींदे समाज में जहर फैलाने की कोशिश कई जैसे कानून हरकत में आयो उन तो सूबाई हुकूमत जिते एक तरफ डोहन मंशियात खिलाफ विढ़ी रही है उते बे पासे औरतुन के बाख्तियार बनाने लाए तारीखी कदम खड़ी रही है शर्जील इनाम मेमण ऐलान किया तो सिंध हुकूमत औरतुन के बिना मुआवजे स्कूटी तरबियत ऐं ड्राइविंग लाइसेंस फराम कर रही है वर्ष निज मेरिट के बुनियाद से कई पे वे उन हाने वकील बिरादरी से ताल्लुक रखड़ औरतुन के भी पिंक स्कूटी मुफ्त डिनी वेंदी जडे तो औरतुन लाए धार पिंक बसू अग ही कामयाबी से हलयू पे वन सूबाई वजीर तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर से गलंदे मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार रुगो थर के कोयले से ही मुमकिन है सिंध सरकार उन जड़ा सब वा अवामी फलाही मनसूबा कामयाबी से शुरू कया जैसे दायरे खे हानी सूबे तीन फैलाया पो वे सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच मुख्तलिफ़ सरकारी मनसूबन में कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक बुनियादन से मुकर्र 85 का मुलाजमन के मुस्तकिल करण जो हुक्म दई छो है हाई कोर्ट के आइनी बेंच आडो मुख्तलिफ़ सरकारी मनसूबन में कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक बुनियादन से मुकर्र मुलाजमन की मुस्तकिली बाबत दरख्वास्तुन से बुधनी थी वकील मौकुफ इख्तियार किया तो दरख्वास्त गुजारन के सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ़ मनसूबन में मुकाबले वे अमल जरिए मुकर्र वो हो उन नौकरियों में साल तीन वाध कई वेंदी रही अदालत रिमार्क्स दिना तो सिंध रेगुलराइजेशन कानून तहत दरख्वास्त गुजारन के मुस्तकिल वन घुर्जे जेतुण के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमन के मुस्तकिली जो हक बुनियादी हक तौर हासिल ना पर सिंध असेंबली कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमन के मुस्तकिल करण के लिए खास कानून साजी कई है सिंध हाई कोर्ट कानून सालन तीन खिदमतों सरअंजाम दींद मुलाजमन के तहफुज फराम कन था हुकूमत बिना कें इम्तियाजी सलूक के समूरन अहल मुलाजमन के कानून जो फायदो दियण जो पाबंद है प्रोग्रामी मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल की जांच में वही अगभराई मेंबर ऑयल तलब शुरुआती शाहिदन के रोशनी में ओगरा के मेंबर ऑयल के किरदार बाबत अहम सवाल सामूँ अची व्या FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ओगरामी मुबैना मेगा करप्शन पेट्रोल स्टॉक्स में हेराफेरी कौमी खजाने के नुकसान पहुंचाएं रेगुलेटरी अख्तियार की मुबैना गलत इस्तेमाल वे मामले की जांच तेजी से जारी रखी वही दस्तावेज मूजिब FIA CC कराची इंक्वायरी नंबर 43,026 तहत ओगरा जी मेंबर ऑयल ज़ैनुल आबदीन कुरेशी के बाकायदा कॉल अप नोटिस जारी कंदे 25 मई 2026 सूमर जी सुबह जो 9 बजे जाती हैसियत में तलब करे वरतो आए। इंक्वायरी में गो पेट्रोल समेत केतरनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों खिलाफ पेट्रोलियम शेन जा जखीरा लिकायण गलत रिपोर्टिंग प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स मुबैना फ्रॉड रेगुलेटरी एहलकार टर्मिनल ऑपरेटर से मिली भगत के इल्ज़ाम जो जायजो वरतो पियो वे केस में वधिक अहम शख्सियतों के भी तलब करण जो इम्कान जाहिर कयो पियो वे। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में पानी की खोट जरई बोहरान। सिंध जो कें दौर में बाबुल इस्लाम से गड जरई खुशहाली की अलामत समझो वो हो अज पानी की शदीद खोट सबब सख्त बुहरान के मुंह दे रो है। दरिया सिंध के वाकुर में घटाई गैर मुनसफानी पानी विर्च मौसमी तब्दीलियों नाकस पॉलिसियों सिंध की ज़रात के तबाही के किनारे ते आणे बिहारियो आहिन। गोछाणन इलाकन में आबादगार सख्त परेशान आहिन। केतरन ही दिलन में वाहन शाखुन में पानी न होजण करे हजारे एकड़ जमीन बंजर बणजी रही आहे। कणक सारिन कमंद सब्जिन जा फसल सख्त मुतासिर थिया जै सबब न सिर्फ आबादगारन के माली नुकसान पहुंतो आहे पर खुराक जी खोट जो बो खतरो पिण वधी रहयो आहे। आबादगारन जो दाहू। आबादगारन जो चवण है असा सजो साल कर्ज खणी बिज भाण जरई दवाऊं वठूं था पर पानी न होजण करे फसल सुकी वञन था। केतरन ही नंढन आबादगारन माल व मवेशी विकणी गुजर सफर करण ते मजबूर थी व्या आहिन जॾहिं त नौजवान रोजगार की तलाश में ॻोठ छॾे शहरन ॾांहुं मुंतकिल थी रहिया आहिन। माहिरन जी राय। ज़रई माहिरन मुताबिक मौसमी तब्दीलियूं पाणीअ जे नाक़िस इंतज़ाम गैरक़ानूनी पाणी चोरी पुराणो आपाशी निज़ाम सिंध जे ज़रई बुहरान जा अहम सबब आहिनि। माहिरन ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं पाणीअ जे मुनसफाणी विर्छ जदीद आपाशी निज़ाम ते ध्यानु न ॾिनो वियो त ईंदड़ सालनि में सिंध में ख़ुराक जो वॾो बुहरान पैदा थी सघे थो। अवामी ख़दशा। सिंध के माण्हुनि जो मुतालबो आहे त पाणी जी मुनसफाणी विर्च यकीनी बणाई वञे वाहन जी सफाई कई वञे टेल ताईं पाणी पहुचायो वञे आबादगारन जे लाइ खास इमदादी पैकेज जो ऐलान कयो वञे। पाणी सिर्फ़ ज़रई ज़रूरत नाहे पर सिंध जी मईशत सकाफ़त ज़िंदगीअ जो बुनियादु आहे। जेकॾहिं पाणी जो मसलो हल न थियो त सिंध जी ज़राअत सां गॾु लखे माण्हुनि जो मुस्तक़बिल पिणु ख़तरे में पइजी सघे थो। हुकूमत माहिरन अवाम खे गॾिजी हिन बहरान जो मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो न त ॿी सूरत में ईंदड़ वक़्तु वधीक ॾुखियो थी सघे थो। हिन वक़्तु ताईं गुलाब ख़ान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद 3S डीलर आशिक होंडा मोटर

0: मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3583-569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंग, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
2: ऐं मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: साने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0383-5569-0300-33-8556-9।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहराबपुर। राबते जे लाइ
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिद्ध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा वडी ईद जो वडियो मोकलूं सिंध हुकूमत ऐलान करे छड़ियो सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी पारो 50 ताईं वञण जो इम्कान शहरन के गैर जरूरी तौर घरां न निकरण जो मशवरो औरतुन के बाख्तियार बनाइबो मुफ्त स्कूटी ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस दींदासीं शर्जील इनाम में मणो सरकारी मंसूबन ते मुकरर 85 मुलाजमन के मुस्तकिल करण जो हुकुम प्रोग्रामिंग करप्शन स्कैंडल की जांच तेज वाइल मेंबर तलब स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा सिंध में पानी की खोट ऐं ज़रई बुहरान सिंध में सरकारी तौर ईद उल अज़हा के चई दिन वाले मोकलों जो ऐलान किया वो है सिंध हुकूमत पारा उन हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया वो है उन नोटिफिकेशन मूजिब ईद उल अज़हा के मौके से 24 मई का 29 मई तई मोकलू होंद वाजे रहे त वफाकी हुकूमत पारा ईद उल अज़हा के मौके से 3 दिन वाले मोकलों जो ऐलान किया वो है जी 24 मई का 29 मई तई होंद मौसमियात खाते सिंध में हीट व्यू जो खदशो जाहिर कर छोड़ो है मौसमियात खाते जो चवण है त 25 मई का 31 मई तई गर्मी पद मामूल का 6 दर्जा सेंटीग्रेड तई वधी सके थो मौसमियात खाते मूजिब सिंध के अंदरूनी जिलन में गर्मी पद 50 दर्जा सेंटीग्रेड तई पहुंचने जो इम्कान है मौसमियात खाते शहरन आबादगारन ए बुजुर्गन के हिदायत कई है तो वो गैर जरूरी तौर बाहर निकलण का पासो कन ए सख्त गर्मी का एहतियाती उपाव इख्तियार कन सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमण है तो सजे सूबे में मंशियात के नासुर खिलाफ बिना फर्क के कार्रवाई जारी है और जहर पखड़ींदर अंसरन खिलाफ सिंध हुकूमत जो तुर्त एक्शन साराह जोगो है उन वादे किया है धरती के मंशियात का पाक करण असांजी पहरी तरजीह है हैदराबाद में एक तकरीब के खिताब कंदे सूबाई वजीर अनमोल नाले औरत जो हवालो दींदे चयो तो हुन समाज में जहर फैलाने की कोशिश कई जैते कानून हरकत में आयो हुन चयो तो सूबाई हुकूमत जिते एक तरफ डोहन ए मंशियात खिलाफ विढ़ी रही है उते बे पासे औरतुन के बाइख्तियार बनाने लाए तारीखी कदम खड़ी रही है शर्जील इनाम मेमण ऐलान किया तो सिंध हुकूमत औरतुन के बिना मुआवजे स्कूटी तरबियत ए ड्राइविंग लाइसेंस फराम करे रही है और उहा वर्ष निज मेरिट के बुनियाद से कई पे वे उन हाणी वकील बिरादरी से ताल्लुक रखड़ औरतुन के भी पिंक स्कूटी मुफ्त दिनी वी जडे तो औरतुन लाए धार पिंक बसू अग ही कामयाबी से हलयू पे वन सूबाई वजीर तवानाई ए इंफ्रास्ट्रक्चर से गलंदे मुल्क में सस्ती बिजली की पैदावार रुगो थर के कोयले से ही मुमकिन है सिंध सरकार उन जड़ा सब वड़ा अवामी फलाही मनसूबा कामयाबी से शुरू कया जैसे दायरे खे हाणी सूबे तई फैलाया पो वे सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच मुख्तलिफ़ सरकारी मनसूबन में कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक बुनियादन से मुकर्र 85 का मुलाजमन के मुस्तकिल करण जो हुक्म दई छो है हाई कोर्ट के आइनी बेंच आडो मुख्तलिफ़ सरकारी मनसूबन में कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक बुनियादन से मुकर्र मुलाजमन की मुस्तकिली बाबत दरख्वास्तुन से बुधनी थी वकील मौकुफ इख्तियार किया तो दरख्वास्त गुजारन के सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ़ मनसूबन में मुकाबले वे अमल जरिए मुकर्र वो हो उन नौकरियों में साल तई वाध कई वेंदी रही अदालत रिमार्क्स दिना तो सिंध रेगुलराइजेशन कानून तहत दरख्वास्त गुजारन के मुस्तकिल वन घुर्जे जेतुण के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमन के मुस्तकिली जो हक बुनियादी हक तौर हासिल ना पर सिंध असेंबली कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमन के मुस्तकिल करण के लिए खास कानून साजी कई है सिंध हाई कोर्ट चयो त उहे कानून सालन तई खिदमतू सरअंजाम दींदड़ मुलाजमन के तहफुज फराहम कन था हुकूमत बिना कें इम्तियाजी सलूक के समूरन अहल मुलाजमन के कानून जो फायदो दियण जो पाबंद है प्रोग्रामी मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल की जांच में वही अगभराई मेंबर ऑयल तलब शुरुआती शाहिदन के रोशनी में ओगरा के मेंबर ऑयल के किरदार बाबत अहम सवाल सामूँ अची व्या FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची ओगरामी मुबैना मेगा करप्शन पेट्रोल स्टॉक्स में हेराफेरी कौमी खजाने के नुकसान पहुंचाएं रेगुलेटरी अख्तियारन की मुबैना गलत इस्तेमाल वे मामले की जांच तेजी से जारी रखी वही दस्तावेज मूजिब FIA CC कराची इंक्वायरी नंबर
43,026 तहत ओगरा जी मेंबर ऑयल ज़ैनुल आबदीन कुरेशी के बाकायदा कॉल अप नोटिस जारी कंदे 25 मई 2026 सूमर जी सुबह जो 9 बजे जाती हैसियत में तलब करे वरतो आए। इंक्वायरी में गो पेट्रोल समेत केतरनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों खिलाफ पेट्रोलियम शेयर जा जखीरा लिकायण गलत रिपोर्टिंग प्राइस डिफरेंशियल क्लेम्स मुबैना फ्रॉड रेगुलेटरी एहलकार टर्मिनल ऑपरेटर से मिली भगत के इल्जाम जो जायजो वरतो पियो वे केस में वधिक अहम शख्सियतों के भी तलब करण जो इम्कान जाहिर कयो पियो वे। स्पेशल रिपोर्ट सिंध में पानी की खोट जरई बोहरान सिंध जो कें दौर में बाबुल इस्लाम से गड जरई खुशहाली की अलामत समझो वो हो अज पानी की शदीद खोट सबब सख्त बोहरान के मुंह दे रो है। दरिया सिंध के वाकुर में घटाई गैर मुनसफानी पानी विर्छ मौसमी तब्दीलियों नाकस पॉलिसियों सिंध की ज़रात के तबाही के किनारे ते आणे बिहारियो आहिन। गोछाणन इलाकन में आबादगार सख्त परेशान आहिन। केतरन ही दिलन में वाहन शाखुन में पानी न होजण करे हजारें एकड़ जमीन बंजर बणजी रही आहे। कणक सारिन कमंद सब्जिन जा फसल सख्त मुतासर थिया जै सबब न सिर्फ आबादगारन के माली नुकसान पहुंतो आहे पर खुराक जी खोट जो बो खतरो पिण वधी रहयो आहे। आबादगारन जो दाहूं आबादगारन जो चवण है असा सजो साल कर्ज खणी बिज भाण जरई दवाऊं वठूं था पर पानी न होजण करे फसल सुकी वञन था। केतरन ही नंढन आबादगारन माल व मवेशी विकणी गुजर सफर करण ते मजबूर थी व्या आहिन जॾहिं त नौजवान रोजगार की तलाश में ॻोठ छॾे शहरनि ॾांहुं मुंतकिल थी रहिया आहिन। माहिरन जी राय ज़रई माहिरन मुताबिक मौसमी तब्दीलियूं पाणीअ जे नाक़िस इंतज़ाम गैरक़ानूनी पाणी चोरी पुराणो आपाशी निज़ाम सिंध जे ज़रई बुहरान जा अहम सबब आहिनि। माहिरन ख़बरदार कयो आहे त जेकॾहिं पाणीअ जे मुनसफाणी विर्छ जदीद आपाशी निज़ाम ते ध्यानु न ॾिनो वियो त ईंदड़ सालनि में सिंध में ख़ुराक जो वॾो बुहरान पैदा थी सघे थो। अवामी ख़दशा सिंध के माण्हुनि जो मुतालबो आहे त पाणी जी मुनसफाणी विर्छ यकीनी बणाई वञे वाहन जी सफाई कई वञे टेल ताईं पाणी पहुचायो वञे आबादगारन जे लाइ खास इमदादी पैकेज जो ऐलान कयो वञे। पाणी सिर्फ़ ज़रई ज़रूरत नाहे पर सिंध जी मईशत सकाफ़त ज़िंदगीअ जो बुनियादु आहे। जेकॾहिं पाणी जो मसलो हल न थियो त सिंध जी ज़राअत सां गॾु लखे माण्हुनि जो मुस्तक़बिल पिणु ख़तरे में पइजी सघे थो। हुकूमत माहिरनि आवाम खे गॾिजी हिन बहरान जो मुस्तक़िल हल ॻोल्हणो पवंदो न त ॿी सूरत में ईंदड़ वक़्तु वधीक ॾुखियो थी सघे थो। हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।